खुदा फरमाएगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई हैं, मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया।

0: और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वो जिसको खुदा चाहे। फिर दूसरी दफा फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे।
1: वा

वो कहेंगे कि खुदा का शुक्र है जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिया और हमको उस जमीन का वारिस बना दिया। हम बहिश्त में जिस मकान में चाहें रहें, तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है।

0: तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द घेरा बांधे हुए हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और कहा जाएगा कि हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो सारे जहान का मालिक है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

और खुदा सच्चाई के साथ हुक्म फरमाता है और जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कुछ भी हुक्म नहीं दे सकते, बेशक खुदा सुनने वाला और देखने वाला है।

और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, तो जो वो लाए थे उससे तुम हमेशा शक ही में रहे, यहां तक कि जब वो फौत हो गए तो तुम कहने लगे कि खुदा इसके बाद कभी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह खुदा उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो।

जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत और वो साहिब ईमान भी होगा तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेशुमार रिज्क मिलेगा।

जो बात मैं तुमसे कहता हूँ तुम उसे आगे चलकर याद करोगे, और मैं अपना काम खुदा के सुपुर्द करता हूँ, बेशक खुदा बंदों को देखने वाला है।

0: बाद
1: बड़े आदमी कहेंगे कि तुम भी और हम भी सब दोजख में हैं, खुदा बंदों में फैसला कर चुका है।
0: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب
1: और जो लोग आग में जल रहे होंगे वो दोजख के दारोगा से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि एक रोज तो हमसे अजाब हल्का कर दे।
0: قال

वही तो है जो जिलाता और मारता है, फिर जब वो कोई काम करना और किसी को पैदा करना चाहता है तो उससे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। अलम

0: और तुम्हारे लिए उनमें और भी फायदे हैं, और इसलिए भी कि कहीं जाने की तुम्हारे दिलों में जो हाजत हो उन पर चढ़कर वहां पहुंच जाओ, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो।
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے
1: أَفَلَمْ

फिर दो दिन में सात आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चराग़ों यानी सितारों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये जबरदस्त और खबरदार के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं।

यहां तक कि जब उसके पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और चमड़े यानी दूसरे आजा उनके खिलाफ उनके आमाल की शहादत देंगे।

और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग न तो सूरज को सजदा करो और न चांद को, बल्कि खुदा ही को सजदा करो जिसने उन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है।

0: जो नेक काम करेगा तो अपने लिए और जो बुरे करेगा तो उनका जरर उसी को होगा, और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं।
1: फॉर द

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए।
1: अलैका या सैयदी,
0: यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए
1: सैयद अल अवलीन वल आखिरीन।
0: FM 92.6। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
2: अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हजरात, प्रोग्राम हयात तय्यबा की 34वीं नशिस्त के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन, आज हम मैदान जंग में मक्की लश्कर की आमद और उनके बाहमी इख्तलाफ के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे कि जिसका आगाज पिछली नशिस्त में हुआ था। इस मौके पर अबू जहल के खिलाफ जो मार्का आराई पर तुला हुआ था, एक और झगड़ा उठ खड़ा हुआ जिसमें मुतालबा किया गया कि जंग के बगैर मक्का वापस जाएं। चुनाचे हकीम बिन हज्जाम ने लोगों के दरमियान दौड़ धूप शुरू कर दी। वो उतबा बिन रबिया के पास आया और बोला, अबुल वलीद, आप कुरैश के बड़े आदमी और वाजिबुल इताअत सरदार हैं, फिर आप क्यों ना एक अच्छा काम कर जाएं जिसके सबब आपका जिक्र हमेशा भलाई से होता रहे। उतबा ने कहा, हकीम, वो कौन सा काम है? उसने कहा, आप लोगों को वापस ले जाएं और अपने हलीफ अमरू बिन हजरमी का मामला जो सरैया नखला में मारा गया था अपने जिम्मे ले लें। उतबा ने कहा, मुझे मंजूर है, तुम मेरी तरफ से उसकी जमानत लो। वो मेरा हलीफ है, मैं उसकी दैयत का भी जिम्मेदार हूँ और उसका जो माल जाया हुआ उसका भी। उसके बाद उतबा ने हकीम बिन हज्जाम से कहा, तुम हंजिला के पूत के पास जाओ, क्योंकि लोगों के मामलात को बिगाड़ने और भड़काने के सिलसिले में मुझे उसके अलावा किसी और से कोई अंदेशा नहीं। हंजिला के पूत से मुराद अबू जहल है। उसके बाद उतबा बिन रबिया ने खड़े होकर तकरीर की और कहा, कुरैश के लोगों, तुम लोग मोहम्मद और उनके साथियों से लड़कर कोई कारनामा अंजाम न दोगे। खुदा की कसम, अगर तुमने उन्हें मार लिया तो सिर्फ ऐसे ही चेहरे दिखाई पड़ेंगे जिन्हें देखना पसंद न होगा, क्योंकि आदमी ने अपने चचीरे भाई को या खालाजाद भाई को या अपने ही कुंबे कबीले के किसी आदमी को कत्ल किया होगा। इसलिए वापस चले जाओ और मोहम्मद और उस सारे अरब से किनारा कश हो रहो, और अगर अरब ने उन्हें मार लिया तो ये वही चीज होगी जिसे तुम चाहते हो, और अगर दूसरी सूरत पेश आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस हालत में पाएंगे कि तुमने जो सलूक उनसे करना चाहा था उसे किया ना था। इधर हकीम बिन हजाम अबू जहल के पास पहुंचा तो अबू जहल अपनी जरा दुरुस्त कर रहा था। हकीम ने कहा कि ए अबुल हुक्म, मुझे उतबा ने तुम्हारे पास ये और ये पैगाम देकर भेजा है। अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद और उसके साथियों को देखकर उतबा का सीना सूज आया है। नहीं, हरगिज नहीं, बाखुदा हम वापस ना होंगे यहां तक कि अल्लाह हमारे और मोहम्मद के दरमियान फैसला फरमा दे। उतबा ने जो कुछ कहा है महज इसलिए कहा है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों को ऊंट खोर समझता है और खुद उतबा का बेटा भी उन्हीं के दरमियान है, इसलिए वो तुम्हें उनसे डराता है। उतबा के साथजादे अबू हुजैफा कदीमुल इस्लाम थे और हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके थे। उतबा को जब पता चला कि अबू जहल कहता है खुदा की कसम उतबा का सीना सूज आया है, तो बोला, उस सरीम पर खुशबू लगाकर बुजदली का मुजाहिरा करने वाले को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किसका सीना सूज आया है, मेरा या उसका। इधर अबू जहल ने इस खौफ से कि कहीं ये मारजा ताकतवर ना हो जाए, इस गुफ्तगू के बाद झट आमिर बिन हजरमी को, जो सुरैया अब्दुल्ला बिन हजश के मक्तूल अमरू बिन हजरमी का भाई था, बुला भेजा और कहा कि ये तुम्हारा हलीफ उतबा चाहता है कि लोगों को वापस ले जाए, हालांकि तुम अपना इंतकाम अपनी आंख से देख चुके हो, लिहाजा उठो और अपनी मजलूमियत और अपने भाई के कत्ल की दुहाई दो। उस पर आमिर उठा और दुहाई देने लगा। इस पर कौम गरम हो गई, उनका मामला संगीन और उनका इरादा जंग पुख्ता हो गया, और उतबा ने जिस सूझबूझ की दावत दी थी वो रायगा गई। इस तरह होश पर जोश गालिब आ गया और ये मारजा भी बेनतीजा रहा। بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہے جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کریں۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب مشرکین جھمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تو تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کی طرف واپس آ گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। प्रोग्राम जावेद है जिंदगी में अली अजबत फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान अली फानी साहब। बड़ी खूबसूरत और अच्छी बातें कर रहे हैं और हम उनसे सीख भी रहे हैं और उनको इंशाल्लाह आगे जिंदगी में फॉलो भी करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था बड़े और छोटों के एहतराम में डिफ्रेंशिएट। देखिये, अब बड़ों को एहतराम करने में शर्म भी नहीं आती है, लोग कर भी देते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, लेकिन जब छोटों की बात आती है तो लोग कहते हैं वो एज में छोटे हैं तो उनको एहतराम देने में हम उनका एहतराम क्यों करें, हम उनको रिस्पेक्ट क्यों दें, वो तो हमसे छोटे हैं। सो इस फैक्टर के बारे में क्या बोलेंगे?
1: देखिए, हम एहतराम जो है ना, इसको हम एक ही, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। एहतराम बुनियादी तौर पर एक प्रोसेस है। अगर बच्चों के साथ एहतराम करने से मेरी मुराद ये है कि जब बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन हो तो बच्चों की उम्र में जाकर बच्चों की मजबूरियों को समझ के उस उम्र के मुतालबों और तकाजों में रहते हुए मैं उनके साथ सलूक कर रहा हूँ। एक बच्चा जो है वो तोतली जुबान में बात करता है तो उसके साथ तोतली जुबान में बात करना ही मैं उसका एहतराम कर रहा हूँ। एक बच्चा जो है वो खिलखिला के हंस पड़ता है आपकी किसी बात पे, तो आप भी हो तो बड़ी उम्र के, लेकिन बच्चे का जब आप घोड़ा बन जाते हो बच्चे के लिए और बच्चा आपकी पुश्त पे बैठ जाता है और आपको घोड़ा बनाता है तो आप उस बच्चे का एहतराम कर रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि जैसे हम बड़ों का एहतराम कर रहे हैं उसी तरह से बच्चों का एहतराम होगा। बच्चों की जरूरतों को समझते हुए कि बच्चों को क्या चीज खुशी देती है। एहतराम हम करते क्यों है कि अगला जो बंदा है उसकी डिग्निटी कायम रहे, अगले बंदे की जो जरूरतें हैं, जो ख्वाहिशें हैं उसके मुताबिक आप अमल करो, दूसरा बंदा आपके सलूक से खुश हो। अब एक बच्चा जिस तरह के सलूक से आपसे खुश होता है, वो आप उससे मजाक करते हो, आप उससे तोतली जुबान में बात करते हो, आप उससे जो है मुख्तलिफ शक्लें अपनी बनाते हो, वो आके आपके कभी कंधों पे सवार हो जाता है तो आप गुस्सा नहीं करते हो, ये वो सारी चीजें हैं जो बच्चे का एहतराम है। हाँ, जब हम बड़ों की बात करते हैं तो बड़ों को किस तरह का हमारा सलूक खुशी देगा कि बड़े आपके घर में आए और आप उनके अदब में खड़े हो जाते हो, ये उनका एहतराम है। को देखते हमारे गांव में ये होता है कि खवातीन सर ढांप लेती हैं, ये उनका एहतराम है। अब हर कल्चर की, हर फैमिली का एक कल्चर होता है और उस कल्चर के अंदर एहतराम की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं और वो शक्लें उस घर में बनी हुई नहीं होती हैं। इंसान ने हजारों साल का सफर किया है उन खास एक्शंस और रिएक्शंस को बनाने में कि इस तरह का अमल होगा तो इंसान किस तरह से रद्द अमल जाहिर करेगा। तो इसी तरह से दूसरे लोगों से एहतराम का मतलब ये है। लेकिन हम आमतौर पर ये देखते हैं कि जो बड़े अफराद होते हैं आमतौर पे हम एहतराम के नाम पर बहुत सारी ऐसा अमल भी कर रहे होते हैं जो एहतराम के जुमरे में आता नहीं है। जैसे मुमताज मुफ्ती अपनी एक किताब में लिखता है कि जब दो मुख्तलिफ उम्र के बंदों को आप एक दूसरे के साथ बैठा हुआ देखो कि एक 40 साल का है और एक 15-16 साल का है और दोनों एक दूसरे से जब बिल्कुल भी बात ना कर रहे हों तो समझ लो ये दोनों बाप बेटा है। मतलब एहतराम के नाम पे एक जो बेटा है वो अपने बाप से बात नहीं कर सकता है, उसकी उम्र की कुछ ख्वाहिशें हैं, उसकी उम्र की कुछ जरूरतें हैं, उसके दाखिली और खारजी तौर पर कुछ तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं उसके अंदर। अब जब उसके बाप को ये चाहिए कि वो इतना एतमाद दे अपनी औलाद को कि हर तरह की बात उससे शेयर कर सके, ये है औलाद का एहतराम। अगर आपकी औलाद आपके खौफ की वजह से कोई ऐसी बात आपसे डिस्कस ही नहीं कर सकती जो कि डिस्कस होनी चाहिए थी, जो बाप के लिए भी फायदे में थी, बेटे के लिए भी फायदे में थी, ओवरऑल उस फैमिली के लिए भी फायदे में थी, जब वो डिस्कस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपने एहतराम के नाम पर एक बहुत बड़ी दीवार दो लोगों के दरमियान में खड़ी कर दी है। अब वो एहतराम नहीं है। एहतराम वो है जो दूसरे फर्द को अपनी बात कहने का मौका दे, अपनी बात अपने मसाइल को दूसरों के ये समझते हुए कि ये जो शख्स है ये मेरा खैर खा है, ये वो शख्स है जो मेरे मसले का हल कर सकता है। और जब बाप या माँ या बड़े भाई छोटे भाइयों को वो ट्रस्ट नहीं देते हैं, वो एतमाद मुहैया नहीं करते हैं जिसके ताबे छोटे बड़ों से अपनी बातें डिस्कस करें, तो वो फिर और कंधे ढूंढते हैं जिनके कंधों पे सर रख के वो रो सकें, जिनको वो अपनी बात बता सकें। अब फिर यहाँ से फिर वो मिसडायरेक्ट हो जाते हैं, वो जब घर में वो माहौल नहीं मिलेगा तो वो बाहर निकलेंगे, किसी दोस्त को बताएंगे यार मेरे साथ ये मसला है। अब जैसे खूनी रिश्ते आपकी जरूरतों को समझते हैं, कोई दोस्त तो नहीं समझ सकता। अब वो दोस्त कैसे उसको एक्सप्लॉइट करता है, या वो आपका हकीकी दोस्त है या वो किसी मादी मफाद के लिए आपके साथ है, तो वो आपको डायरेक्शंस अब क्या दे रहा है कि ये आपको मसला हो गया तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तो वो आपकी एज में है तो उसने आपको मशवरा ही क्या देना है, क्योंकि उसके भी वही मसाइल हैं जो आपके मसाइल हैं। लिहाजा वो जिस तरह से उसके साथ नबर्दाजमा होना चाहता है आपको भी वही मशवरा देगा कि भाई तुम भी यही काम करो। बड़ों से मुशावरत इसीलिए की जाती है कि बड़े उन रास्तों से गुजर चुके होते हैं, उन्हें पता होता है इस रास्ते में जो कहां कहां खारदार झाड़ियां हैं, कहां कहां बिच्छू हैं, कहां कहां सांप हैं, कहां कहां इन बच्चों को इन इन चीजों से बचेंगे, तो ये इंतहाई तहफ्फुज के साथ अपने सफर को तय करते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप उस शख्स जो खुद उस रास्ते पे नहीं चला हुआ उससे आप अपनी बात शेयर करोगे, इससे आपका मन तो शायद हल्का हो जाए लेकिन आपको कोई जो एडवाइस है वो नहीं मिल सकती।
0: वेरी वेल समड अप। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि आपने भी बात की एक्सपीरियंस की कि हम बड़ों को फॉलो करके उनसे एक्सपीरियंस उनसे जो ले सकते हैं और हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, लेकिन आप नहीं समझते कि इंसान को बेशक बड़े जो है वो रहबर होते हैं, राहबर होते हैं, आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, लेकिन इंसान जो है वो जब तक खुद नहीं कुछ चीज इम्प्लीमेंट करता, खुद उस पेस से नहीं गुजरता, खुद मुश्किलें रुकावटें एंड ऑल दोस थिंग इन चीजों से खुद नहीं जब तक मुकाबला नहीं इनका करता, सामना करता, आप नहीं समझते कि तब तक इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता।
1: देखो ना, जिंदगी जो हमारी होती है ना वो कुछ रहनुमा असूलों पर चलती है। एक खुदाए बुजुर्ग बरतर की जात है जो जानती है कि मैंने इंसान को कैसा बनाया है, वो इंसान की जरूरियात से वाकिफ है, वो इंसान की उन तमाम शख्सियत के पहलुओं से वाकिफ है कि जो उसको कामयाब या नाकाम करेंगे। तो सबसे पहले तो अल्लाह खुद इंसान को रहनुमाई फराहम करता है कि आप ये करोगे तो आपके लिए तबाही है, ये करोगे तो आपके लिए फला है। उसके बाद अंबियाए कराम भी आते हैं, उनका भी यही काम है कि वो लोगों को बताएं कि हदायत का रास्ता कौन सा है और वो रास्ता जिस पे चल के, देखो एक ये है कि मुझे एक सफर को तय करने में 40 साल लग गए हालांकि वो सफर 5 साल पे हो सकता था। क्यों? मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई एडवाइस करने वाला नहीं था, मुझे कोई रहनुमाई देने वाला नहीं था, आपके बकौल मेरी कोई राहबरी करने वाला नहीं था। तो जब राहबरों का या रहनुमाई करने का मतलब ये होता है कि आप जिन जिन मसाइल का शिकार होकर एक छोटे सफर को बड़े लंबे अरसे तक इररेलेवेंट रास्तों पे आप जिंदगी में चलते जाओगे, तो बड़े फिर यहाँ पे आपकी मदद करते हैं कि भाई आप इररेलेवेंट रास्ते पे जा रहे हो, अगर आप इस रास्ते पे आ जाओगे तो मंजिल वही मिल जाएगी जो आप भी शायद बहुत ज्यादा मुशक्कत करके या बहुत ज्यादा खारदार झाड़ियों में से गुजर कर या जिंदगी के नशीबो फराज को तय करके आप हासिल करोगे, वही मंजिल शायद आपको फिर आसानी से भी मुयस्सर आ जाए। हर दुनिया के अंदर जो जिस रास्ते का इंसान इंतखाब करता है ना, हर रास्ता जो है उसकी अपनी मुश्किलात हैं। जिंदगी में एक बात अजबद आप याद रखो कि कोई भी रास्ता आसान नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मैं मैस मीडिया की फील्ड मैंने ज्वाइन की तो इसमें मुश्किलें नहीं है, इसकी अपनी मुश्किलें हैं। आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हो उसकी अपनी मुश्किलें हैं, कोई डॉक्टर बनता है उसकी अपनी मुश्किलें हैं। एक बात तय है कि जिंदगी का जो सफर है वो आसान नहीं है। जिस रास्ते पर भी चलोगे उस रास्ते की अपनी मुश्किलें हैं, उसके अपने मसाइल हैं, उसके अपने मुतालबे और अपने तकाजे हैं, आपने उनसे नबर्द आजमा होना ही होना है। हाँ, अब जिस भी सफर पे आप चलो उन सफर पे बहुत पहले लोग चल चुके हैं, आप फिर उनसे मुशावरत करते हो। जंग आपने ही लड़नी है, वो आपकी उंगली पकड़ के उन रास्तों से बचा के नहीं चलेंगे, वो आपको बता देते हैं कि भाई ये मसले होंगे, आपने इनसे इस तरीके से नबर्द आजमा होना है। तो सिर्फ लोगों से मशवरा करने का या बड़ों से रहनुमाई लेने का ये फायदा हो जाता है कि जंग तो आपने ही लड़नी है लेकिन उस जंग को लड़ने की जो महारतें हैं कैसे लड़नी है, ये बड़े आपको सिखाते हैं।
0: जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। और अब देखें जिंदगी में कुछ ऐसे मौके भी आते हैं, देखें हम लाइफ में जब लाइफ से गुजरते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो जिनका हमें रिग्रेट भी होता है, हम नाराज भी होते हैं और हम बुरा भी फील करते हैं। अब देखें एक बंदे की हम इज्जत कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं प्रॉपर तौर पर, लेकिन कुछ स्टेजेस ऐसी आती है जब इंसान मायूस हो जाता है, वो कहता है कि मुझे इन रिटर्न वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही या मुझे इन रिटर्न उस तरीके से इज्जत नहीं मिल रही, और वो बिल्कुल एक ऐसे फेज में चला जाता है कि मायूसी मायूसी ही मायूसी उसकी जिंदगी में छा जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
1: तुम्हारी सारी सिचुएशन जो है ना, सवाल को गालिब ने एक शेर में समोया हुआ है कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी से गिला करे कोई।
0: वाओ,
1: कि जिंदगी के अंदर जितने भी मसाइल है ना वो मसाइल इस वजह से हैं कि हम दूसरे लोगों से कुछ तवक्कोआत वाबस्ता किए हुए होते हैं। क्या मैं इसलिए लोगों का एहतराम करूं कि मुझे उसके बदले में कोई फायदा मिलेगा? मैं इसलिए नेकी करूं क्योंकि जन्नत में मेरे कोई बाग बन जाएंगे? भाई नेकी मैंने कहा खुद इस काबिल है कि उसको किया जाए। कानून के अंदर ही वो फलाह शामिल है जो आपके लिए भी जरूरी है और दूसरे के लिए भी जरूरी है। नेकी अपने वजूद के अंदर ही एक फलाह का नाम है। कानून का एहतराम अपने वजूद के अंदर ही एक फलाह का नाम है। احترام اپنے وجود میں ہی اپنی اور اگلے کی فلاح کا نام ہے. تو دوسرا آپ کے ساتھ دیکھو, میں ہر روز ہم آتے جاتے ہیں, مجھے روز یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو جاتے ہوئے راستہ دے دیتے ہو نا, وہ گزرتے ہوئے سمائل بھی پاس کرتا ہے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا
2: ہے. یہ تو ہے,
1: بڑے کم لوگ ایسے ہوں گے. روز اگر میں 20 لوگوں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہوں, ایک یا دو ہوں گے جو اس کو بودر نہیں کریں گے کہ کسی نے میرے لیے تھوڑی
2: پرائیڈ میں آ جاتے ہیں کہ یار
1: یس. حالانکہ باقی جو میجورٹی آف دا پیپل ہے نا, انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ جب اس کو محبت دی جائے گی تو وہ پگھلے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک بابا جی تھے نا, جب ان سے پوچھا گیا, اگر بریک کا ٹائم نہیں ہو رہا تو میں اس واقعے کی طرف جاتا ہوں.
2: اچھا
1: جی جی جی. تو ایک بابا جی جو تھے, ان سے جب پوچھا گیا تھا جی دنیا سے نفرت کیسے ختم ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ محبت کرو, لوگوں سے نفرت ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی اچھا اگر پھر بھی ختم نہ ہو تو کیا ہو, انہوں نے کہا پھر اور محبت کرو. اچھا اگر پھر بھی ختم نہ کہو تو پھر, انہوں نے کہا کچھ اور محبت. الٹیمیٹلی جو برائی ہے, جو دوسرے لوگوں کا آپ کے ساتھ نفرت ہے, اس کو ختم نفرت کبھی نہیں کر سکتی. اس کو ختم اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ محبت ہی ہے. آپ جب لوگوں کو احترام دینا شروع کر دیتے ہو تو آپ اپنے گرد و نواح میں لوگ رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں محترم ہو جاتے ہو. لوگوں میں محترم ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا احترام کرو. تب تک آپ محترم نہیں ہو سکتے, تب تک آپ مکرم نہیں ہو سکتے جب آپ باقی لوگوں کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے آپ ان کا احترام نہیں کرتے ہیں. ان بعض اوقات انسان کی زندگی کے اندر دوسروں کا احترام کرتے ہوئے کچھ مسائل بھی آتے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو. بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ٹیکنگ فار دا گرانٹ آپ کے اس ایٹیٹیوڈ کو لے رہے ہیں, اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے, کیونکہ وہ پروفیشنلزم کی ڈیفینیشن ہی یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں وہی پروفیشنل ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مفادات سے بالا تر ہو کر صرف اس کے لیے آپ کے لیے اچھا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایک انسان ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ میرے مالک کی مخلوق ہو, کیونکہ آپ اللہ کے پیدا کردہ انسان ہو, لہٰذا ان ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے وہ لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو ویسے صوفی کہا جاتا ہے.
2: اچھا سر, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن مجھے ایک بات بھی یاد آئی ہے, وہ آپ نے پیار کی بات کی تھی نا, تو حضرت علی کا ایک فرمان ہے, ان کا کال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے.
1: بالکل ٹھیک.
2: لیکن آپ کا جو دوست ہے اسے ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے.
1: بلا شبہ.
2: یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور آپ سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا. وہ بھی رائٹ بیک.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और प्रोग्राम जहां बता जिंदगी में। एक बार फिर अली अजबत आपकी खिदमत में हाजिर है और सर इरफान अली फानी साहब से मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहा हूं। और सर, इस क्वेश्चन के साथ ही आपने एक मैसेज भी देना है हमारे लिसनर्स।
1: ठीक हो गया।
0: और सर, मुझे ये बताइए कि दो तरह के जमाने थे, एक पुराना जमाना था, एक नया दौर है जिसमें हम अब मौजूद हैं। तो पुराने जमाने में लोग जो है वो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी और इतना ज्यादा डर था, इतना ज्यादा खौफ था कि मतलब जब उस्ताद के साथ चलने में भी बराबर नहीं चलते थे हम, मतलब एक फुट का डिस्टेंस रखना, उस्ताद के साथ चलना जो है वो भी समझते थे कि डिसरिस्पेक्ट है। इसी तरह जो है आज का दौर अगर देखा जाए तो हम उस्ताद से हाथ भी मिला रहे होते हैं, उसके साथ उसी तरह फ्रैंक हो रहे होते हैं जिस तरह अपने दोस्त के साथ। तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये एक अच्छी चीज नहीं है, तो इसके बारे में आप बताइए।
1: अच्छा, जो इंसान के रवैये भी होते हैं ना अजबद, ये भी इवॉल्व होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो दौर जो था उस्ताद के पीछे चलना या वालिदैन के पीछे चलना, ये उस दौर के तकाजे थे, उस दौर की इकदार थी। अब जमाना नया है। वो अहमद नदीम कासमी का एक बहुत खूबसूरत शेर था कि ये इर्तका

0: थे और आजकल के वालदैन अपने बच्चों से डर रहे होते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि आजकल के बच्चे बुनियादी तौर पर अपने वालदैन के वालिद हैं, यानी कि इस हद तक उनकी आपस में मोहब्बत होती है और वालदैन डरते हैं कहीं हमारा बच्चा नाराज ना हो जाए, इसको कोई मसला ना बन जाए। ये नए दौर की जो चीजें हैं, असल में ना इंसान को खालिक की मोहब्बत या खालिक के बारगाह में भी कबूल होने के लिए जो सफर करना पड़ता है ना, वो खालिक की मखलूक से मोहब्बत का सफर है। अगर खालिक को भी आपने पाना है तो डायरेक्ट खालिक तक आप नहीं पहुंच सकते हो, वो रास्ता भी मखलूक से होके गुजरता है। तो इकबाल ने कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो जब हम अपने गिर्द निर्वाह में रहने वाले लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो वो जो खालिक जिसने इस मखलूक को पैदा किया है वो भी आपसे इसलिए मोहब्बत करेगा कि वो आप उसकी मखलूक से मोहब्बत कर रहे हो।
1: जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वाज़े सर ने बताया कि प्यार बांटे और बदले में आपको प्यार ही मिलेगा, और एक स्माइल दीजिए बदले में आपको एक और स्माइल जो है वो मिलेगी। तो आज बड़ा मजा आया सर के साथ बात करने में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा अच्छा लगा होगा और बड़ा पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा और हमारा प्रोग्राम जरूर सुने और हमें इससे आगाह कीजिए। तब तक के लिए हमें आप दीजिए इजाजत, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।